0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट।

मोर बना देगी। यो नार HR लठ मार तड़ी पार रखे आकर चोरी ताकर चोरी कभी भी दर्दे चापड़ चोरी रहने बरती ना कोई चोली मुंह से गाली आग से गोली। बदल तू अपनी सोच ये छोटी कमर पे घस के बांध ले तोती कंधे तय कंधा मिल जाए इब छोरी छोरा तय कम नहीं होती।

0: FM live across Southampton on 99.8
1: एक
0: FM.
1: पल की लापरवाही.
2: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी हो फिर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: Hi, my name's Jay. I listen to Avaaz Radio and I think you're doing a great job.
1: We are from Bournemouth and we heard Avaaz FM and good luck
2: to Avaaz FM. Jyoti Berry.
3: My name is Ramesh. I'm from Bournemouth. I'm very happy and I would like to support you having Avaaz FM in this area of Dorset and Hampshire because there's nothing else here.
4: My name's Anu. I work on this radio. So really enjoy there. It's a very good community radio station. We support Punjabi. Say all the good luck to you and hope you grow like this radio.
5: Hi, I am Samreen and I listen to Avaaz Radio. I think the presenters are brilliant. It's really a good show and I think you guys are doing an amazing job.
6: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
7: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
8: You're listening to Avaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Avaaz FM on 99.8.
9: चलते हैं पाकिस्तान लाइन पर हैं अजमल शोबी.
10: अस्सलाम वालेकुम.
9: वालेकुम सलाम.
10: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में.
9: हां जी शुक्रिया.
10: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिश को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज एफएम और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से मेहरबानी तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ बहुत मजा आ रहा है बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते हैं मिला जुला सा माहौल होता है जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्ञा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है और ओके बनता है
9: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो हमारी बात हो और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है
10: बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को
9: थैंक यू वेरी मच
10: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि भी हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर उन सब के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिंदगी बखैर
9: थैंक यू वेरी मच जी टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय
10: आई लव यू ऑल

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: लोग कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते, पर मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं दुनिया की आवाज नहीं सुनता हूँ, सुनता हूँ तो सिर्फ अपने दिल की आवाज।
3: सुनो दिल की।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Awaaz FM Local Radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: चल ना, ऐ क्यों नखरे कर दी पई है। बेबे तुसी भी चलो, पापा जी ने हुनी बुलानी है मैं।
1: ले तुहानू इनविटेशन कार्ड भेजा।
0: छड्डो जी,
2: ब्रेकिंग न्यूज़ है कुड़ी, करो का हो गया है।

0: आवाज FM।
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: मैडम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Hello there, Ali. It's Malcolm here. I've actually got Hours FM on my digital radio now. Can you hear it playing in the background? Thoroughly enjoyed speaking to my old friend Rahia Baines this morning. Thank you very much.

लगा ले धर ले चाहे भूत की धोती पाले अश्वत्थामा का मोती पानी में पानी में माटी में लोहा में काठी में जिया के जोड़ में आखन की पाटी में आकाश खुले में मन की गाठी में हा रे हा रे हा।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है।

0: So we need a new jingle, Ellie. We've got to get in that studio and produce a new jingle.
1: At Southamptonshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: How do you say it? Awaz or Awaz?
5: Assalamu alaikum. My name is And can you please play something for me and my baba? My name is Oswa and my baba name is Amir.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: It's thunder, lightning. The way you move is frightening.
3: Thunder.
2: Gotta knock on wood. See, we can do it all on this show. We can do it all on this show.

लाश जिसकी तलाश वो है कहाँ ढूंढा जहाँ मेरी आरज़ू मेरी जुस्तजू मैं कौन हूँ और हूँ कहाँ।

0: हाय, मैं हूँ वही जिसने कभी किसी से कहा था कि एक गरम चाय की प्याली हो और उसको पिलाने वाली हो। वही जिसने कभी कहा था कि तेरे नाम किया है जीवन अपना सारा सा। वही जिसने किसी से कहा था कि कभी किसी की दुल्हनिया बनोगी या मुझसे शादी करोगी।
1: मुझसे शादी करोगे? लाइफ बना दूंगी,
0: लेकिन पर्दे तक तो ठीक है, पर असल में
1: माझ्याशी लग्न करशील? मजेत रहशील?

0: मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक सवाल है जो जितनी बार मैंने सुना है वो दुनिया में किसी ने नहीं सुना होगा। कब कर रहे हो?
1: कब कर रहे हो?
0: पहले ये सवाल सुन के मैं बहुत चिढ़ता था, अब मैं भिड़ता हूँ। कोई पूछता है कि कब कर रहे हो तो मैं पूछता हूँ कि कब मरे।
1: हाय, मर जावा गुड़ खाके, तेरे लिए ते मरने भी तैयार हूँ। तू एक बारी ब्याह ते कर मेरे नाल।
0: You know, बड़े से बड़ा डूड शादी के बाद सबड्यूड हो जाता है। शादी के दिन जो बैंड बजता है ना, वो तो सिर्फ शुरुआत होती है।

चोरी के आम का हर कोई दीवाना होता है। जो पकड़ा गया वो चोर है और जो बच गया वो सियाना। जिसकी लाइफ में वाइफ नाम की नाइफ है उसे बच के सेफ खेलना चाहिए।

0: আমাকে বিয়ে করলে মজায় থাকবে।
1: খেয়ার যাহা লড়কা ও লড়কি হো ওহা লড়না তো হোগা হি না। আর ইয়ে আজ কি বাত নেই, ইয়ে তো তবসে চলা আ রাহা হ্যায়। জব হাওয়া কো কাওয়া বনা কে আদম নে দূসরি কি ওর কদম বাড়া থা। অ্যাডম অফ অ্যানাদার ম্যাডম, অ্যাডম অফ অ্যানাদার ম্যাডম। घर में जिस पति की धाक नहीं चलती, बाहर उसकी आंख चलती। समझ लीजिए तो वाइफ लड़की लड़की तो अपने आप खुल जाती नजर की खिड़की, खुल जाती नजर की खिड़की, नजर की खिड़की खुल जाती नजर की खिड़की।
0: नंजते मदवे मार कंडू मजा मारू।
1: कहते हैं कि शादी के पहले मर्द अधूरा होता है, करेक्ट। शादी के पहले मर्द अधूरा होता है और शादी के बाद फिनिश। अब क्या हुआ, लग गया झटका जबरदस्त?
0: कब कर रहे हो?
1: कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? और शादी के बाद फिनिश। कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? करो करो।
2: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें, नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM।
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज, आवाज एफएम के साथ।
4: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
5: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
6: Life ko atakna nahi aata, to phir hum aur aap kyun ruke? Is tezi se daudti zindagi ka saath do. Zindagi chale bina ruke.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: You see there were two adverts there that are labeled up. Let's have a look. Government ad. And this has come on. We've got four of them now. That must be updated by the big boss. Mm. I wonder if we've got to do government ads to appease the government to keep Ali out of prison.

0: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: Southampton's Community Radio, Hours FM, 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: At Southampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने-कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
0: From Wolston to West End, from Milnbrook to Marchwood, this is Awaz FM.

0: I know. How do we get Finnish listeners?
1: I don't know.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: This is Natalie DeLuccio and keep listening to Awaz FM.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर, आवाज FM।
4: मैं राज राम जी बोलता हूँ।

भैया, अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: उठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही.
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होके डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: Ek pal ki laparwahi. आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

सुबह सवेरे मैंने सोचा कि चले ब्रेकअप सॉन्ग लगा दूं, बिकॉज सुबह सवेरे ब्रेकअप कर दिया. व्हाट इज शी थिंकिंग ऑफ, व्हाट इज शी थिंकिंग ऑफ. इट्स अवर सेवन कम्युनिटी रेडियो, दिस इज कैफे वर्ल्ड विद मी योर होस्ट अली, हियर विद यू अंटिल 11 o'clock. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. इफ यू हैव जस्ट जॉइंड अस, वेलकम टू द शो. गेट इन टच विद मी हियर इन द स्टूडियो ऑन 0238198072. दैट्स 0238198072, और यू कैन व्हाट्सएप द स्टूडियो. एंड इफ यू हेड ओवर टू फेसबुक, सर्च फॉर अवर सेवन Southampton, join me on the page there and drop me a message there as well. It'd be great to hear from you guys. It's Cafe Awaz with me, your host Ali, here with you until 11 o'clock. Right guys, do let me know how you are getting on, and what is your plans for the rest of the week. Awaz Fan Community Radio, this is Cafe Awaz, and let's take you to the next track, another remix track I've got ready for you today, and this is Bade Bazaar. Let's take you to this one, and I'll see you straight back after this. Don't go away, more great music coming up.

0: हमें तो लूट लिया रेडियो आवाज वालों ने, हमें तो लूट लिया रेडियो आवाज वालों ने, वाह वाह यही बोलना था मेरे को।
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें, मॉम का।
5: Thank you, mom.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: This is Natalie DeLuccio and Sunse Rahi hai Awaaz FM.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Your voice in your community. This is 99.8 Hours FM.

0: की आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर, आवाज एफएम।
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज, आवाज एफएम के साथ।

0: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज FM।
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pear Tree, this is Ours FM.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Awaz FM supporting local radio, communities making waves, turning the tide on isolation.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: This is Natalie DeLuccio and Sunte Rahi hai Awaaz FM.
3: Do you have time for a pleasant experience?
4: Chalo chalo roy America.
5: ओ ताऊ राम राम, ओए बंद कर, ए बोला ना बंद कर। गुड इवनिंग फोक्स, मायसेल्फ भाई साहब त्यागी फ्रॉम मेरठ, नाउ आई विल रॉक विद माय देसी लठ। रमार बैंड का इंट्रोडक्शन भी सुन ले, जय आनंद प्रकाश, जय बजाया करे ढोल, और जय किशन लाल बिच्छू, जय बड़ी चीज बजाया करे भाई, और बाकी है गा चोरस, जय रबड़ी इमरती, नाम ना बता, ये पप्पू की अम्मा है। और चलो रे शुरू हो जाओ, इब मैं सुनाता हूँ अमेरिका का हिप हॉप। और जय माता दी,
6: लेट्स रॉक।

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM. 24 hours a day, Hours FM, online and on air. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.
1: Andy Burnham is in Berlin today announcing new security partnerships with Germany.
2: We're glad to be here to ratify the Kensington Treaty today, which, if we work at it, Friedrich, will improve our security here in Europe, but also help grow our economies.
1: The PM has expressed an openness to Germany joining the Global Combat Air Programme. That's a pact between the UK, Italy and Japan to build the sixth generation of fighter jet. A seventh RAF Fairford suspect has today been bailed. Frankie Hairsine has the details.
3: The 22-year-old British man was arrested on Tuesday on suspicion of preparation of terrorist acts. It makes him the seventh person to be arrested and bailed following the incident at RAF Fairford last month. US bombers have been removed from the base, with the Prime Minister saying there were strong indications Iran played a role in the terror plot.
1: A serving member of the Royal Navy has today been charged with spying. 24-year-old Teddy Young is accused of obtaining protected information which could benefit an unnamed foreign power. He was arrested at his home in Bedfordshire on Tuesday and will appear in court today on charges that he obtained, copied and recorded information. Religious and race-related hate crime has hit a record high. Police have reported hate crime itself has been rising 7% year-on-year, with close to 150,000 incidents recorded in the year to March 26 in England and Wales. On average, that's around one attack every 5 days. A 9-year-old girl has died after a car crash in the Highlands. It happened yesterday evening when two cars collided just south of Inverness. Police are appealing for anyone with information to come forward. Now, an update on the ASOS hack. They've today said an unauthorised party gained access by impersonating a trusted contact to get login information. This all comes after customers received a phone alert saying that the retailer had been hacked. The fashion business told customers to remain cautious over unexpected messages or calls. That's the latest from Radio News Hub. I'm Matthew Dudley.
4: Radio Works. New research finds a staggering 67% of adults do not have a will or admit theirs is out of date. Here's Peter Davina Franks from WillAid.
5: A will isn't just about money or property. It's about protecting the people you love and making your wishes clear. This November, WillAid gives people the opportunity to have a basic will professionally written by a solicitor while supporting good causes. Appointments are open now, so visit willaid.org.uk to find your WillAid solicitor.
0: St Denis to St Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's community radio, Hours FM.
6: Adab, namaskar, sat sri akal, khem cho. Samin, aap hamara program, jiska naam hai ek baar phir sher o nagma, sunna shuru kar chuke hain. जो आप तक आवाज़ रेडियो साउथहैम्पटन लेकर आता है हर वीरवार 3 से 4 बजे तक, और मैं हूं आपका होस्ट जेरी, और मेरे साथ स्टूडियो में है आवाज़ रेडियो साउथहैम्पटन के डायरेक्टर अली बेग साहब, और इस प्रोग्राम में मेरे हेडमास्टर। तो अली भाई, ये पिछला हफ्ता कैसा रहा आपका?
7: जी बिल्कुल ज़बरदस्त, एज ऑलवेज बिजी रहता हूँ, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और मौसम को एंजॉय करते रहते हैं बस।
6: जी
7: हर वक्त खुश रहना ज़रूरी होता है।
6: मौसम ने करवट ले ली है वैसे,
7: थोड़ी सी ली है।
6: जी हाँ, और थोड़ा ठंड का मौसम शुरू हो चुका है।
7: जी जी बिल्कुल।
6: तो मेरे सुनने वाले से गुजारिश है, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, ठंड से बचा के रहिए, बच के रहिए
7: जी,
6: और गरम गरम चाय का प्याला पिए अपने यारों दोस्तों के साथ।
7: कुछ हाँ, भी नहीं है।
6: यारों दोस्तों के साथ मिलते रहिए, चाय पे चर्चा करें,
7: इधर आ जाए।
6: हाँ, इधर आके चर्चा करें, या अपने ग्रुप में यारों की टोली के साथ आवाज़ रेडियो सुनिए और हमारा प्रोग्राम इंजॉय करिए
7: जी।
6: तो
7: प्रोग्राम से, से याद दिला देता हूँ ना कि अगर हमें कांटेक्ट करने का होगा तो हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर 02381980072 और इसके अलावा व्हाट्सएप के ज़रिए अगर आप मैसेज करना चाहें तो हमारा स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर 07786914400।
6: जी सर जी आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके
7: जी
6: हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं।
7: जी बिल्कुल।
6: तो अली भाई आम तौर पे देखा गया है कि जो शायर होते हैं
7: जी
6: वो जब लिखना शुरू करते हैं
7: जी
6: तो या तो वो चाय का कप लेते हैं साथ में चाय पीते रहते हैं
7: जी
6: और कुछ लोग जो हैते जो सिगरेट नोशी करते हैं
7: जी जी।
6: वो सिगरेट पीते हैं
7: जी जी
6: इल्लत है हालांकि
7: जी जी
6: और कुछ लोग हैं वो जमीनी हुक्का लेके लिखने वाले जो
7: जी
6: है
7: जी जी जी
6: जैसे मिर्ज़ा गालिब के लिए वो मशहूर है कि वो जब लिखते थे तो एक बंदा उनका हुक्का जो वो गर्म रखता था
7: जी जी
6: और कुछ जो लोग हैं जो सागरों मीना में डूब के
7: जी
6: शराब के नशे में जब होते हैं तब उनको शायरी ज़्यादा लिखनी आती है।
7: बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही।
6: जो पर एक शायर ऐसे हुए हैं जिनका डील डॉल बहुत तगड़ा था
7: ओ
6: और वो सुबह 4 बजे उठ के अपने जिस्म पे तेल की मालिश करते थे।
7: अच्छा।
6: तेल की मालिश करने के बाद खूब वो दंड बैठक पेलते थे और खूब वर्जिश करके
7: ठीक
6: और फिर नहा धो के वो शेर लिखने बैठते थे।
7: अच्छा इसमें भी कोई राज होगा।
6: जी हाँ
7: जी।
6: और उन शायर का नाम है कतील शिफाई।
7: कतील शिफाई जी।
6: कतील शिफाई जो है अपने आप में एक बहुत बेहतर शायर हुए हैं और उन्होंने उर्दू और हिंदी शायरी में अपना नाम कमाया है।
7: अच्छा।
6: और बॉलीवुड फिल्मों में भी उनके बहुत से गीत उन्होंने लिखे हैं लिरिक्स लिखे हैं
7: जी
6: जिनमें से कुछ है फिर तेरी कहानी याद आई
7: जी
6: संभाला है मैंने
7: बहुत अपने
6: जी जी। नाराज फिल्म का
7: जी
6: कुमार
7: जी
6: सानू की आवाज़
7: जी
6: में ताया जी और सबसे जो मुझे पसंद है और शामिन को भी अच्छी लगेगी चांदी जैसा रंग है तेरा
7: बहुत खूब
6: जिसको आवाज़ दी थी पंकज उदास ने
7: जी जी जी
6: और तू कितनी जी हाँ पंकज उदास ने इसको आवाज़ दी थी ये कुछ कतील शिफाई के कुछ मशहूर जो थे कलाम शायरी उनकी थी
7: जी।
6: तो अब मेरे सामने कतील शिफाई की एक बुक है किताब है कतील शिफाई और उनकी शायरी
7: जी जी
6: इसमें कतील शिफाई की बायोग्राफी दी जीवनी गज़लें नज़में रुबाइयाँ
7: वाह
6: सब इसमें टिकी हुई हैं
7: जी
6: माफ़ कीजिए उसमें से मैंने एक उनकी गज़ल जो चुनी है उसका उन्वान उन्होंने दिया था आज की बातें कल के सपने
7: वाह
6: कुछ इस तरह
7: ठीक
6: जब भी तन्हा मुझे पाते हैं गुजरते लम्हे
7: जब भी
6: तन्हा मुझे पाते हैं गुजरते लम्हे तेरी तस्वीर सी राहों में बिछा जाते हैं
7: बहुत खूब
6: मैं के राहों में भटकता ही चला जाता हूँ मुझको खुद मेरी निगाहों से छुपा जाते हैं
7: वाह
6: शुक्रिया जी मेरे बेचैन ख्यालों में उभरने वाली मेरे बेचैन ख्यालों पे उभरने वाली अपने ख्वाबों से ना बहला मेरी तन्हाई को
7: वाह
6: जब तेरी सांस मेरी सांस से तहलील नहीं क्या करेगी मेरी बाहें तेरी अंगड़ाई को।
7: वाह वाह वाह,
6: शुक्रिया जी। और अगला शेर है, जब ख्यालों में तेरे जिस्म को छू लेता हूँ, जब ख्यालों में तेरे जिस्म को छू लेता हूँ, जिंदगी शोला माजी से झुलस जाती है, जब गुजरता हूँ गमे हाल के वीराने से, मेरे एहसास की नागन मुझे डस जाती है। और आखिरी शेर है, हम सफ़र तुझको कहूँ या तुझे रहजन समझूँ, हम सफ़र तुझको कहूँ या तुझे रहजन समझूँ, राह में ला के मुझे छोड़ दिया है तूने, एक वो दिन कि मेरा प्यार बसा था दिल में।
7: वाह,
6: एक वो दिन कि मेरा प्यार बसा था दिल में, एक ये वक्त के दिल तोड़ दिया है तूने।
7: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब,
6: शुक्रिया जी। तो शामिन, ये था कतील शिफाई का कलाम आपके लिए
7: जी।
6: अगर आपके पास कतील शिफाई की कोई गज़ल या कोई रुबाई है और हमारे शामिन के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। अली भाई, हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर बताएंगे आपको।
7: जी, हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर 02381980072। और इसके अलावा अगर आप हमें वो व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें मैसेज कर सकते हैं 07786914400। तो ये है हमारा स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर। तो आपका व्हाट्सएप के इंतज़ार होता है, हमारे आपके कॉल्स का इंतज़ार होता है। जी सर,
6: चलिए तो क्यों ना बड़े एक नगमे की तरफ
7: जी
6: एक नगमा सुना दें अपने सामिन को।
7: तो कौन सा नगमा आज सुनेंगे, फिर तेरी कहानी याद आई, इसी से शुरू करते हैं।
6: जी हाँ जी हाँ, ये भी कतील शिफाई का लिखा हुआ ये गाना है जो बॉलीवुड फिल्म में इसको फिल्माया गया था।
7: तो लीजिए सर, शुरुआत करते हैं इसी से। तो अपने सामने से ये शुरू करते हैं मूवी फिर तेरी कहानी याद आई।

0: वेलकम बैक चामिन, आपने एक खूबसूरत सा नगमा सुना और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अली भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक यूं तो हर जबान की अपनी अपनी मिठास है, हर लैंग्वेज की
1: जी,
0: हर भाषा की
1: जी
0: अपनी अपनी मिठास है, बोली की अपनी अपनी मिठास है
1: जी।
0: पर वो जो मज़ा, जो लज़त उर्दू जुबान में है उसका अपना ही अंदाज है।
1: बिल्कुल सही बात है
0: जी। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि आती है उर्दू जुबान आते आते।
1: बस सही, बिल्कुल सही है।
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल सही है।
0: कुछ लोग वो होते हैं कि वो उर्दू की अब मैं क्या कहूँ, माफ़ी के साथ कहता हूँ
1: जी,
0: कि उर्दू की यही तो ही फेर देते हैं जैसे खाम खाम ही वो उर्दू बोलते हैं कि और जनाब आपने खाना खाया
1: ठीक
0: कहीं का नुक्ता कहीं पे लगा देते हैं उनको। हाँ, उनको ये नहीं, उसको समझ आनी चाहिए कि एक नुक्ता भी खुदा से जुदा कर देता है।
1: सारी बात एक नुक्ते की होती नुक्ते की होती है।
0: अगर जो नुक्ता है वो हे के नीचे आ जाए तो वो जुदा है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हे के ऊपर हो जाए तो वो खुदा है।
1: खुदा है, बिल्कुल सही है
0: जी। हाँ, एक नुक्ते का हेर
1: बात फेर सारे है। नुक्ते की बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।
0: ऐसे ही एक साहब उर्दू में इजहार मोहब्बत कर रहे थे
1: जी,
0: तो कहने लगे कि बेगम आपसे मिलकर हमें बहुत राहत, मुसरत और फरहत हुई।
1: वो
0: तो बेगम कहने लगी जी मुझे भी फरहान, रहमान और इमरान हुए हैं
1: सही, बिल्कुल।
0: तो शामिन, ये उर्दू बोलने का, उर्दू लिखने का, उर्दू समझने का एक अपना सलीका है, एक अपना दस्तूर है। बहरहाल आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को एक बार फिर मेरे पास इंतखाब है
1: जी,
0: कतील शिफाई का
1: जी। इरशाद,
0: कतील शिफाई अपने आप में बहुत उम्दा शायर हुए हैं
1: जी। बिल्कुल,
0: उनकी कतील शिफाई की किताब से एक गज़ल है तरदीद
1: जी।
0: तरदीद मतलब किसी चीज़ को खंडन करना, किसी चीज़ को नकारना।
1: ठीक ठीक, इशारा
0: कुछ इस तरह, और कोई बात छेड़ो,
1: और कोई बात छेड़ो,
0: और कोई बात छेड़ो, ये मोहब्बत के फसुरदा तजुर्के किस काम के हैं, ये तो कुछ टुकड़े तुम्हारे बदनामा अंजाम के हैं।
1: बहुत को
0: और कोई बात छेड़ो,
1: और कोई बात छेड़ो,
0: कोई और बात जिसमें कह कहे लहरा रहे हो, और कोई दास्तां जिसको कमल दोहरा रहे हो, या फिर ऐसी गुफ्तगू जिसमें सितारे गा रहे हो।
1: बहुत को
0: कुछ नहीं तो मुस्कुराओ, जेरे लग नगमात छेड़ो।
1: बहुत को
0: कोई और बात छेड़ो,
1: कोई और बात छेड़ो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
0: कोई और बात छेड़ो जिसमें कह कहे लहरा रहे हो, और कोई दास्तां जिसको कमल दोहरा रहे हो, या फिर ऐसी गुफ्तगू जिसके सितारे गा रहे हो। कुछ नहीं तो मुस्कुराओ, जेरे लब नगमात छेड़ो, कोई और बात छेड़ो,
1: कोई और बात छेड़ो,
0: ये भी कोई बात है इफलास और दौलत से हारे, ये भी कोई बात है इफलास और दौलत से हारे, क्या कोई कश्ती कभी डूबी है दरिया के किनारे?
1: वाह जी वाह, बहुत खूब।
0: तुम समझ पाए ना थे शायद जवानी के इशारे,
1: तुम समझ ना पाए थे
0: शायद जवानी के इशारे, अब तो कोई और ही साजीना है जज्बात छेड़ो।
1: वाह जी वाह, कोई और बात
0: और छेड़ो। कोई बात छेड़ो।
1: वाह जी वाह,
0: माफ कीजिए।
1: और कोई बात छेड़ो,
0: और कोई बात जो मेरे तुम्हारे काम आए, और कोई बात जो मेरे तुम्हारे काम आए, और कोई दास्ता जिसमें रगम का नाम आए।
1: वाह,
0: क्यों किसी की आबरू पर मुफ्त में इल्जाम आए? अब ये मसरूफ है हटाओ, जिक्र इमकानात छेड़ो।
1: वाह जी वाह,
0: और कोई बात छेड़ो,
1: और कोई बात छेड़ो।
0: ये मोहब्बत के फसुरदा तजर्के किस काम के हैं? ये तो कुछ टुकड़े तुम्हारे बदनुमा अंजाम के हैं।
1: बहुत खूब,
0: और कोई बात छेड़ो।
1: वाह जी वाह, और कोई बात छेड़ो।
0: शुक्रिया जी,
1: जबरदस्त, बहुत खूब।
0: तो ये था कतील शिफाई जी का कलाम। तो माफ कीजिए सामिन, आज मेरा गला कुछ ख़राब है,
1: ये
0: मौसम की वजह से।
1: ये नहीं चलेगा, और कोई बात करो
0: जी, और कोई बात छेड़ो। तो और कोई बात छेड़ते हैं कि हाँ जी हाँ, और कोई बात क्या छेड़ें कि ये जब गला ख़राब होए तो थोड़ा आहिस्ता बोलना चाहिए। वैसे मैं स्टूडियो में आके जरा ज़ोर से बोलता हूँ, घर में तो आहिस्ता ही बोलते हैं।
1: वो पे उस वक्त गला
0: ख़राब, क्योंकि ज़्यादा बोलने की
1: इजाज़त
0: नहीं होती है जी। हाँ, और ऊँचा बोलना नहीं चाहिए,
1: नहीं चाहिए
0: जी। हाँ, तो ये अली भाई, कभी कभी ऐसे होता है कि माजी में हमने देखा जो हिस्ट्री है
1: जी,
0: उसमें ये था कि लड़ाइयाँ हुई, बहुत जंगें लड़ी गई, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेवन जो हुई हैं उसमें हुई, कभी कौम कौम पे
1: एक
0: बहस हो जाती है, कभी जो रिलीजियस वो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट वो हो जाते हैं, वो अपने अपने क्या कहते हैं आर्गुमेंट्स होती हैं, वो अपने जो उनकी विचारधारा होती है
1: जी, एक
0: दूसरे को ठीक कहते हैं, जो कुछ और ठीक कहते हैं, एक बहस होती है जिसका कोई मायने नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, वो शुरू हो जाती है
1: जी। लोग भूल जाते हैं कि भाई शुरुआत कहाँ से हुई
0: जी। हाँ हाँ, वो ये होती है, जो बहस होती है वो मियाँ बीवी की बहस होती है।
1: अच्छा,
0: उनकी जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं मुल्कों में या कम्युनिटीज़ में, उनका तो कोई वो होता है
1: लीडर,
0: एक रीज़न होता है
1: जी, जी।
0: जो घर में मियाँ बीवी के जो बहस होती है उसका बेस होता है रिमोट,
1: रिमोट
0: तौलिया है, या सोफ़ा, गद्दी या तकिया, कोई मतलब
1: कोई खास मैना,
0: खास बात नहीं होती, उस पे बहस होती है। और ऐसी बहस होती है जिसमें जीत हमेशा खातून की होती है, बीवी की होती है, और शौहर तो बेचारा सिर पकड़ के बैठ जाता है कि मिस क्या जवाब दूं मैं।
1: नहीं देखे ना, ये उनका हक है
0: जी जी। हाँ,
1: ये उनका हक है
0: जी,
1: कि जीत उन लोगों ने ही पानी होती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: ये हाँ, उनका हक है।
0: तो जैसे मुजारों में कहते हैं साढ़े हक के तेरा।
1: अच्छा
0: अच्छा, उस बहज इतनी होती है, कभी कभी तो इतनी दूर तक पहुंच जाती है कि उनको ये समझ नहीं आती कि ये बहस शुरू कहां से हुई थी।
1: वही तो,
0: हाँ, इसका पॉइंट क्या था?
1: नहीं, किसी को याद ही नहीं होता,
0: याद ही नहीं रहता कि ये
1: कई दिन गुजर जाते हैं
0: या किस किस पॉइंट से
1: बिल्कुल शुरू हुई थी। कई दिन गुजर जाते हैं और वो याद नहीं रहता कि भाई अक्सर कहाँ से शुरू हुई थी ये सारी बात।
0: जी हाँ, ऐसे एक बीवी ने फोन किया अपने शौहर को, कह रही मुझे अभी के अभी आके ना मेरे मायके से लेके जाओ।
1: अच्छा,
0: वो कह रहा है अभी तो तुझे 3-4 दिन हुए हैं गए हुए, 2 हफ्ते के लिए गई थी तो आराम से रह वहाँ अपने बहन भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ इंजॉय कर रही है ना। नहीं, कहती मुझे नहीं यहाँ रहना।
1: अच्छा,
0: मुझे अभी के अभी आके लेके जाओ।
1: ओके, वो क्यों?
0: बोला क्या बात होगी, बात तो बताओ क्या बात हो। कह रहे नहीं वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी के अभी आओ और मुझे लेके जाओ। कह रहा अच्छा मैं आ रहा हूँ पर मुझे बताओ क्या बात है। कह रही मैंने बहन से लड़के देख लिया, भाई से लड़के देख लिया, अपनी भाभी से लड़के देख लिया, नंद से लड़के देख लिया, ससुर सौरे से लड़के देख लिया, पर जो मजा आपसे लड़ाई में है ना वो किसी किसी के साथ नहीं आता।
1: ये सही है भाई, ये भी एक प्यार होता है।
0: हाँ, प्यार होता है। और बहसबाजी में हमेशा जो बंदा होता है वो सिर पकड़ के बैठ जाता है और ऐसी बहस होती है और बंदा ना थक हार के चुप हो जाता है और सोफे पे लेट जाता है। और बीवी सोचती है कि बोल बोल के सिर तो मेरा दुखना चाहिए और ये आराम से सोफे पे लेटा हुआ है,
1: तब भी कोई चैन नहीं है।
0: तो सामिन, अगर आपके घर में भी मियां बीवी के ऐसे कोई आर्गुमेंट होती है, वो आप मायूस ना होइए।
1: नहीं,
0: वो हमारी जो फैमिली का एक हिस्सा होता है जिसको हम जुदा नहीं कर सकते। हम एक वक्त की रोटी मिस कर सकते हैं
1: जी,
0: एक वक्त का खाना मिस कर सकते हैं
1: जी,
0: पर जो
1: एक दूसरे
0: मियां बीवी की बहस है इसमें एक मिठास होती है, एक अपनापन होता है।
1: बेशक,
0: चाहे वो कैसी भी कड़वी हो उसमें कुछ सच्चाइयाँ होती हैं।
1: बेशक,
0: जो
1: सिर्फ मियाँ और बीवी जान सकते
0: हैं, जो सिर्फ मियाँ बीवी इसका मजा ले सकते हैं।
1: बेशक,
0: तो आपने पिछली बार बहस का कब मजा लिया हमें
1: हमें भी बता दें,
0: हमें भी बताइएगा
1: और किस चीज के ऊपर हुआ ये भी बता दें अगर याद है तो।
0: हमारा स्टूडियो का फोन नंबर है 02381-980072 और व्हाट्सएप है 07784691440। और आपको याद दिला दें ये प्रोग्राम आप आवाज़ रेडियो साउथहैम्प्टन 99.8 FM पर सुन रहे हैं और इसे डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग इंटरनेशनल भी सुन सकते हैं। और मैं हूं आपको उस जेरी और मेरे साथ स्टूडियो में हैं आवाज़ रेडियो साउथहैम्प्टन के डायरेक्टर रेली बेग साहब
1: जी
0: और प्रोग्राम में मेरे हेडमास्टर हैं।
1: तो ठीक है,
0: क्यों ना सामिन को एक नगमा सुनाया जाए,
1: नगमा हो जाए।
0: जी
1: ठीक है, अब आपके लिए तैयार किया है कुमार सानू की आवाज़ से ये अगला नगमा मूवी नाराज, और बोल है संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को।
0: इसके लिरिक्स लिखे हैं
1: जी
0: कतील शिफाई साहब।
1: कतील शिफाई साहब जी, बिल्कुल।

0: वेलकम बैक शामिन। आपने कुमार सानू की आवाज़ में कतील शिफाई का लिखा हुआ एक खूबसूरत सा नगमा सुना। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अली भाई, ये हमारे फैमिली में हर एक जो फैमिली मेंबर का अपना अपना एक रोल होता है
1: जी।
0: माँ बाप का रोल होता है, भाई बहन का रोल होता है,
1: बिल्कुल,
0: या कह लीजिए भाभी का रोल होता है, या जो जीजा होता है, या आगे रिश्तेदार होते हैं वो होता है
1: जी।
0: पर एक जो किरदार है फैमिली का सबसे अहम, वो मैं माँ को समझता हूँ।
1: बेशक, इसमें कोई शक नहीं है जी, बिल्कुल।
0: कि एक फैमिली में माँ का जो एक किरदार है, एक रोल है, वो सबसे अहम होता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: घर के सब मेंबर के काम खत्म हो जाते हैं
1: माँ के नहीं,
0: जो माँ का, माँ के काम है
1: जी,
0: वो देर रात तक जब सब सो जाते हैं तब भी उसके काम खत्म नहीं होते।
1: बिल्कुल सही है।
0: उसके काम तब खत्म होते हैं जब वो शौहर के दूसरे दिन उठने के काम सारे समेट लें, अपने बच्चों के दूसरी सुबह उठने के सब सारे काम समेट लें।
1: बिल्कुल सही।
0: तब कहीं जाके उसको

0: बेहतर नसीब होता है
1: बेशक
0: सबसे बाद में,
1: बिल्कुल सही,
0: और उठना सबसे पहले,
1: पहले, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
0: तो ये माँ का जो रोल हमारी जिंदगियों में है सबसे अहम रोल होता है। और मैंने एक नज़म लिखने की कोशिश करी है
1: जी,
0: हालांकि ये कोशिश ही है क्योंकि इस नज़म में
1: माँ
0: जो
1: माँ के बारे में कुछ लिखना
0: जी हाँ
1: कोई आसान नहीं है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और हर लफ्ज़ जो भी आप लिखेंगे वो कोशिश ही होगी,
0: कोशिश ही है ये
1: जी।
0: पर उसमें मैं कुछ ऐसे लम्हे यादें जो मेरे जहन में है अपनी माँ के लिए
1: जी,
0: वो मैंने उसमें कुछ लिखने की कोशिश करी है। उसको नज़म को मैंने उन्वान दिया है माँ की याद,
1: माँ की याद जी, बिल्कुल इशात।
0: हाँ जी, माँ आज भी जब ख्वाबों में आती है, माँ आज भी जब ख्वाबों में आती है गोद में बिठा के मुझे खिलाती है,
1: बहुत
0: आसमानों पे झूल जाता हूँ मैं, आसमानों पे झूल जाता हूँ मैं, सारी दुनिया कदमों में मेरे आ जाती है,
1: बहुत खूब,
0: मैं दुनिया भर के गम भूल जाता हूँ, मैं
1: बेशक
0: दुनिया भर के गम भूल जाता हूँ अपनी हथेलियों से जब वो मुझे सहलाती है,
1: बहुत खूब
0: शुक्रिया जी। लगता है वक्त फिर बचपन की दहलीज पर रुक सा गया है,
1: बहुत खूब,
0: जब माँ मुझे अपनी आगोश में छुपा लेती है, फिर जब आंख खोलता हूँ तो कमरा खाली होता है,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब,
0: फिर जब आंख खोलता हूँ तो कमरा खाली होता है, ना वो गोद होती है ना लोरी सुनाई देती है,
1: बहुत खूब,
0: तब दिल के किसी वीरान कोने से एक आह उठती है कि माँ तो चली गई मगर आज भी, कि माँ तो चली गई मगर आज भी उसकी मोहब्बत मुझे जिंदा रखती है,
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी। उसकी दुआओं का साया अब भी मेरे साथ चलता है, उसकी दुआओं का साया अब भी मेरे साथ चलता है, और उसके दम से सारी दुनिया मेरे कदमों में आ जाती है,
1: बहुत खूब,
0: माँ आज भी जब ख्वाबों में आती है गोद में बिठा के मुझे खिलाती है, आसमानों पे झूल जाता हूँ मैं, सारी दुनिया मेरे कदमों पे आ जाती
1: है, आ जाती है, बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी,
1: बहुत खूब।
0: तो शामिन ये एक नज़म थी जिसका उन्वान मैंने रखा था माँ की याद,
1: बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत दिल से
0: जी, हाँ शुक्रिया जी। हाँ पर ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, माँ का जो प्यार है वो तो अपार है
1: जी जी,
0: अनलिमिटेड है,
1: बेशक बेशक,
0: उसका कोई अंत नहीं है,
1: बेशक बेशक।
0: तो अगर सामिन अगर आपके पास भी कोई माँ की बाबत माँ के सब्जेक्ट पे कोई आपकी याद है माँ के साथ जो आपके साथ नहीं है
1: जी,
0: तो हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा
1: जी जी, बिल्कुल, हमारे व्हाट्सएप स्टूडियो के व्हाट्सएप के नंबर पर 07784691440, और इसके अलावा अगर आप स्टूडियो में कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर है 03381980072, ये हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर है, आपके कॉल्स का मैसेजेस का हमेशा इंतज़ार रहते हैं
0: जी। और मैं चाहूँगा कि अली भाई ये शामिन को हम एक गाना सुनाए,
1: प्यारा सा
0: फिल्म राजा और रंग का,
1: वाह वाह,
0: माँ के लिए जो गाना लिखा था वो जो गाया गाना गाया गया
1: जी,
0: तू कितनी अच्छी है कितनी भोली है,
1: बेशक लीजिए सर।

0: माँ बच्चों की जा होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। शामिन ये खूबसूरत सा नगमा आपने सुना है, और फिल्म थी राजा रंक, और ये माँ पे जो गाना लिखा गया था बहुत ही बेहतरीन था। अब मेरे सामने इंतखाब है पॉपुलर मेरठी साहब का मजाइया कलाम
1: जी,
0: कुछ इस तरह
1: जी शायद
0: पॉपुलर मेरठी।
1: ओह ही इज वेरी फनी।
0: हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए, खोए हम भी। हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी। दो दिन बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर लाकर फिर आराम से सोए हम भी।
1: ठीक है।
0: तो अगला शेर है पॉपुलर मेरठी साहब का। अगर तुम जवानी में नजरें मिलाते, कभी साथ पीते कभी साथ खाते, बुढ़ापे में अब क्या करूंगा तुम्हारा, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते।
1: वाह जी वाह।
0: फिर कोई नया नात नचाने के लिए आ, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ।
1: अरे वाह।
0: फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ। इतवार की छुट्टी है फुर्सत से हूँ मैं भी, ठेंगा इसे ही कुछ तो दिखाने के लिए आ।
1: सही।
0: और अगला शेर है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है ये बतलाना जरूरी है, तुम्हारे बाप को इधर से सरकाना जरूरी है।
1: सही।
0: मुझे तुमसे मोहब्बत है ये बतलाना जरूरी है, तुम्हारे बाप को इधर से सरकाना जरूरी है। नहीं घर से गया तो गालियां देकर निकालूंगा,
1: अच्छा
0: असूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। अगला शेर है कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया, कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया, यूं लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट,
1: अच्छा
0: रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। और आखिरी शेर है पॉपुलर मिर्टी साहब का कि 6 महीने में ही ये हाल किया बीवी ने,
1: अच्छा
0: 6 महीने में ही ये हाल किया बीवी ने, साल भर तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो दबा कर हमें घर में, जिस तरह सूखे फूल किताबों में मिले।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तो शामिल ये था पॉपुलर मेरठी साहब के कुछ मजाया
1: जी
0: शेर
1: जी,
0: तो
1: बड़े जबरदस्त
0: जी। हाँ तो मेरे ख्याल में
1: प्रोग्राम का
0: वक्त होने को है
1: जी।
0: मिलेंगे अगले हफ्ते तक के लिए। अली भाई उससे पहले मैं चाहूँगा आप अपने सामिन को
1: जी
0: हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर
1: जी हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर 02381980072 और इसके अलावा व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 07786914400।
0: जी हाँ तो इसके साथ ही ये प्रोग्राम ख़त्म करने की हम अपने सामिन से इजाज़त चाहेंगे
1: जी।
0: अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन वीरवार को इसी समय
1: जी
0: इसी वक्त 3 से 4 बजे तक। तब तक के लिए
1: खुदा हाफिज। जाते जाते आपके लिए पेश करते हैं एक प्यारा सा नगमा पंकज उदास की आवाज़ से, और यह है चांदी जैसा रंग।

0: इस गाना बड़ी पसंद नहीं, बड़ा फेवरेट गाना पाड़ा।
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
10: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
0: बड़ा शुक्रिया सोना, साड़ी पसंद ने गाने लाए ने, बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया। प्रोग्राम बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम, कमियां पिया बहुत अच्छा बोलिया, बड़ा प्यार आया।
11: अरे मिश्री जैसी तोरी सूरतिया

0: I am a big fan, long time listener, first time caller.
1: You certainly are. You certainly are.
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
5: साउथहैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं मैं तुम्हें सलाम करता हूँ इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं उनमें एक प्रोग्राम शेर नगमा भी है ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं ज़रूर इसमें शामिल हों वक्त किसी का दोस्त नहीं ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए वक्त के साथ चलें वक्त की तज़ीम करें आखिर में दो शेर जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था या खुशबू जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं शम में बज़्म में तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं दिन डूबे तो छुप जाते हैं साए आखिर साए हैं

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: इस गाना मारी पसंद नहीं, मारो फेवरेट गाना मारा।

0: किसी की धड़कने यूं ही बढ़ा रखी हैं। सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा कितनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मैकदों में वीरानी सी छा गई है, मैकदों में वीरानी सी छा गई है, यो आपने महफिल की रौनक सजा रखी है। नजरों के प्यालों से छलकते जाम ये, नजरों के प्यालों से छलकते जाम ये, हर सू में कशों की बाढ़ लगा रखी है। हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है। सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है।
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: एक पल की लापरवाही।
5: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hello, how are you? It's me, Yasser. You play a good song for me.

0: 24 hours a day, hours FM, online and on air.
1: Uncle, मुझे तो बड़ी होके
2: एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।

हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही। बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू माँ।

0: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल यार। मैं हुणी ग्राउंड आया सा, घर प्रोग्राम तुहाड़ा लाया, डाउनलोड कीता। तू बोल सें मेरे सा कोई फरमाइश कर सा ना, कोई केड़ा गाना सुनना चाहे अपने वेले आला या दोया आला, जेड़ा गाना असा आख सा लासे ना, माड़े मैसेज ले पहुंचनी है फिर मैं सुना।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Awaz FM, live across Southampton on 99.8 FM and on DAB Channel 7D in South Hampshire and via the website awazfm.co.uk.

0: इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?
1: जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। दो रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए?
2: That many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
5: एक पल की लापरवाही।
6: अंकल, मुझे तो बड़े होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: इस गाना मारी पसंद नहीं, मारू फेवरेट गाना मारा।

0: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल या? मैं हुणी ग्राउंड आया सा घर, प्रोग्राम तुहाड़ा लाया, डाउनलोड कीता। तू बोल सें फिर असा कोई फरमाइश कर सा, कोई केड़ा गाना सुनना चाहे अपने वेले आला या दोयां दा, जेड़ा गाना असा आख सा लासे ना, माड़े मैसेज ले पहुंचनी है फिर मैं सुना।
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
10: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
11: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर आवाज एफएम।
12: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया। अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.

0: the dark. Hello. Makes you notice, doesn't it? A little bit of darkness refines the senses, focuses the mind. And let's get into it. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Do you like the voice? Do you want me to do it again?
1: एक पल की लापरवाही
2: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था पायलट बनना था मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था

0: It's thunder, lightning. The way you move is frightening.
1: Thunder.
0: Gotta knock on wood. See, we can do it all in this show. We can do it all in this show.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: Get your favorite song on the radio. Contact us now.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: From St. Denis to St. Mary's, from Portswood to Pear Tree, this is Ours FM.

0: Every Saturday at 5, it's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई

0: Hi, this is Abbas Hassan, and keep listening to Awaaz FM.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: Awaaz FM supporting local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation. Oh, no.